मेल हुण्या सरगा नौरङ्गी गाजो ज हुण्या सरगा नौरङ्गी गाजो ज साली गई छन्ना लगा खेल साली गई छन्ना लगा खेल बिना गयो लौसाली गा खोज बिना गयो लौसाली गा खोज हुण्या चरगा नौरङ्गी गाजो ज हुण्या चरगा नौरङ्गी गाजो ज साली गई छ बजुरल गा खेल।